राम्रे बोल्दैन कि मान्छे साह्रै हिम्मत वाली मात्र सम्हाल्न लौ धनी धनी धनी मात्र

0: यो कागज के मेची वा और झिल्काई कई पर्सनल नम्बर ब्लक लैबी पर्सनल मोबाइल नम्बर मे उनी यो टेलिकमर भए अफिस तरी आएर ब्लक लैर खलखाई
1: अनि बैंगरी
0: बैंगरी
1: अँ
0: चर्चै तलिला।